अनंत श्री विभूषित इंद्रप्रस्थ एवं हरियाणा पीठाधीश्वर श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज के पावन चरणों में भक्तों के लिए प्रस्तुत है ये अनुपम भेंट।

0: मैं तेरी इश्क में मर न जाए कहीं। यस ब्यूटीफुल गजल फरजाना खान की आवाज थी, एंड ऑफ कोर्स लता मंगेशकर सैंग दिस सॉन्ग, द लेट लता मंगेशकर जी सैंग द सॉन्ग मेनी इयर्स अगो इन द फिल्म लोफा, एंड ऑफ कोर्स नाउ इट हैज बीन वन ऑफ दोज यू नो न्यू आर्टिस्ट दैट आर सिंगिंग द सॉन्ग. Yeah, of course, and it'll be with Ibi Mahmood, and it's our ghazal hour.
1: People always say to me, Barry, how do you keep your car running so smoothly? So, my car's a bit of a snob. It won't settle for just any filter. It demands man filters. So I visit Goldwagen to get my man filters, those premium ones in those iconic yellow-green boxes. Honestly, I've tried telling my car who's in charge, but when it comes to trusted performance, the car wins. Man, the filter your car would choose if it could talk. Goldwagen, keep on driving.
2: Drivers, this winter, South Africa's roads can change in seconds. One moment it's clear, next, dense fog blinds your view. Don't drive on memory, drive on visibility. If you can't see clearly beyond 50 meters, pull over safely at the nearest truck stop. Stay alert, stay alive. Check your surroundings and inform others. See and be seen. Let's navigate winter roads together. This message is brought to you by the National Department of Transport.
0: जी हाँ, यू आप इबी महमूद के साथ हैं, एंड आई सी द गजल दैट आई प्लेड बिफोर द एड हैज ब्रॉट सो मेनी मेमोरीज बैक. दैट सो मेनी ऑफ यू हैव सेंट इन सम गुड मैसेजेस, बट एवरी वन ऑफ यू वांट टू रिमेन एनोनिमस बिसाइड्स ऑफ कोर्स कैश फ्रॉम केप टाउन, एंड देन वी हैव तराना एज वेल हुज आल्सो सेइंग सम गुड वर्ड्स आउट देयर टुगेदर विद द शाहिद मियां, कैश ए सबिता सुखदेव, एंड ओ गॉड दादी माँ एज वेल. जी पाकिजा दादी माँ एज वेल. तो लीजिए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. लेट्स लिसन टू जगजीत एंड चित्रा.

आप क्यों नहीं छोड़ देते? इतने भी खुफिया नहीं है आप। पहले दिन से आप जो इत्र लगाते हैं ना, उसकी खुशबू पहचानते हैं हम।